0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में जो हम कम चलता है। तुले जी है लता जी फिल्म महबूबा में से।

फिर भी मेरा मन प्यासा, लता जी की आवाज़ में फिल्म महबूबा में से निकाले हैं, आर डी बर्मन के साथ पर हमने पेश किए। VVV.FM.NL पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है मैं आपको सुनाऊँ ये गीत, मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। हाँ, फिल्म पतंगा में से, सॉरी कटी पतंग में से निकाल रहे हैं।

इस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियन साहब को सुनाए हैं आरडी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाका दिए धमाकादार गीत है।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी। ये गीत आपको सुनाया गया, फिल्म है लाखों में एक, और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में पेश हुआ फिर गैम्बलर में से निकाल कर निकली सैफ तक का ये गीत एस देव बर्मन के साज पर हम आपको सुनाएंगे।

लता जी आपको सुनाए अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयाँ में से है नेक हिंदी फिर से शस्त्र का जी यानी कि फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है, तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन, जी हाँ मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेत 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे, जी हाँ फिल्म गुलामी में से निकाल कर, ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह क्या दिव्यत था रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है। जी हाँ रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमने कहा ना मैं कौन कीरा तेंग बहरहाल। लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुनाई है फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग उफरलीद। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा लेकिन सेस हेल यंग उफरलीद दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं। मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शास्त्री का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकादार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकादार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकादार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांच पर। और ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकतिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साथ पर मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली निकने से का ये गीत हमने एक बार कहा था पता नहीं कब लेकिन एक बार फिर कह देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्म में साज दी है 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 में निघ्न शस्त्र का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका सारे भी बनता है, जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए www.fawnfm.nl पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। उदित नारायण और अलका याग्निक जी, फिल्म धड़कन से निकाल रहे, जी नहीं सॉरी फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा। उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फकीरा में से निकाल कर 1976 निकली सही का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बात यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नेकन तीन सेशन सेस्ट का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नई गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नई गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरफा हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है

जान तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओवर फॉन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से।

ए चांद की जेवाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेवन से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निख दी इन सेवंत 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादा।

फ्रॉम द मूवी तवर हाउस से भी हमने पेश किए हैं, ए मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और जरूरत खत्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं याद न जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफी जी की आवाज में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके करीब है। भरी दुनिया में आखिर दिल

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी की आवाज में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से आप सुनेंगे द टाइटल।

अभी आप सुन रहे थे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा, पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता, लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनीता से हमने पेश किए हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। किशोर दा आ रहे हैं प्रोग्राम में और गीत का बोल है, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर से आप सुनेंगे।

फ्रॉम द मूवी पत्थर के सनम से हमने पेश की है आशा भोसले और दमायती मुकेश जी की आवाज़ में भी आपने सुने हैं मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ मुझे किसी की खोज है। सुनने वालों एक सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने हैं वाले हैं बंदा परवर थाम लो जिगर। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी नज़र होती है इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी की नज़र होती है लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर रब की नज़र होती है।

अभी आप सुन रहे थे बंदा पडवर थाम लो जिगर, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। आँखों में कयामत के काजल, चलिए मिलकर सुनते हैं।

महेंद्र कपूर जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे आंखों में कयामत के काजल, फ्रॉम द मूवी किस्मत से हमने पेश किए हैं। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रहती है रुके रास्तों की तरह। प्यार का मौसम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में तुम बिन जाऊं कहाँ।

अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊं कहां, ये दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सनम तुमको चाह के। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से आप सुनेंगे लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, पाना तो सब चाहते हैं सब कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती।

किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी हम रास से हमने पेश किए हैं। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, मैं कहती हूँ जो अपने होते हैं वो झुकने ही नहीं देते। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हम पेश करते हैं।

तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, मोहम्मद रफी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी राजकुमार से हमने पेश किए हैं। इतने बुरे तो नहीं थे, इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्ज़ाम लगाई लोगों ने। कुछ किस्मत ख़राब थी, कुछ आग लगाई लोगों ने। तुमने पुकारा और हम चले आए।

अभी आप सुन रहे थे तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। घर तुम भुला ना दोगे, सपने ये सच्चे होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले कुछ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, और वो ये है, जवाब तो हर बात की दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो लफ्ज़ों को क्या समझेंगे।

मूवी यकीन से हमने पेश किए हैं गर तुम भूला ना दोगे। आपको सुनाने वाले थे लता जी। इतना है तुमसे प्यार मुझे, फ्रॉम द मूवी सूरज से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, फिल्म का नाम है सूरज और मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं। चलिए ये गीत मिलकर सुनते हैं।

तुमसे प्यार मुझे मेरे राजदार। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में, सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। अगर इंसान के दिल और दिमाग में बैठ जाए तो हर खूबसूरत और पाक रिश्तों की बुनियाद हिलाकर रख देता है। यह कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

0: अभी आप सुन रहे थे यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती वाहवा, तुम सब को छोड़कर आ जाओ।
1: प्रभु भक्तों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का तीसरा कांड, अरण्य कांड।

अयोध्यापति दशरथ नंदन करुणायतन प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों, देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र ने प्रभु का बल देखने के लिए आपको पहले से बताए हुए तुच्छ कर्म किए, परंतु जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे कहीं शरण न मिली तो देव ऋषि नारद जी ने उसे बताया कि हे जयंत, श्री राम के विरोधी को भला कौन शरण दे सकता है, अतः अब तुम प्रभु श्री राम की ही शरण में जाओ। वो प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, वे शरणागत को नहीं ठुकराते, यह उन्हीं की बाण है भक्तों। तब वो दुष्ट कौवा प्रभु श्री राम की शरण में जाकर त्राही माम करने लगा, तो श्री रघुनाथ जी उसकी आंख से वो तिनका निकाल उसे एक

जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को नवजात शिशु बनाकर पालने में झुलाया था, उन्हीं माता अनसुईया ने वैदेही सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की। माता अनसुईया बोली, पुत्र सीता, धीरज, धर्म, मित्र और नारी के आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी अथवा दीन ही हो, परंतु नारी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मन, कर्म, वचन से पति चरणों की सेवा ही नारी का एकमात्र धर्म है। पुत्री सीता, संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारियां हैं। प्रथम, जो नारी पति के सिवा अन्य पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। दूसरी, जो पर पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है। तीसरी, जो धर्म एवं कुल की मर्यादा के कारण पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तथा चौथी वे हैं जो अवसर न मिलने के कारण व्यभिचारिणी यानी कुलटा नहीं हो पाती।

जब सीतापति श्री रघुनंदन जी वन में आगे चले तो एक स्थान पर हड्डियों का एक ढेर देखकर प्रभु ने मुनियों से उस ढेर के विषय में पूछा तो मुनियों ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, फिर भी अनजान की भांति हमसे पूछते हैं तो हम बतलाते हैं। प्रभु, राक्षसों के दलों ने ऋषि मुनियों को खा डाला है, यह उन्हीं ऋषियों के अस्थि समूह है। आह, करुणा निधान दयालु श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया, यानी आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने दोनों भुजा उठाकर संकल्प किया, यानी प्रतिज्ञा की कि मैं रघुवंशी क्षत्रिय दशरथ पुत्र राम आज प्रण करता हूँ, यानी शपथ लेता हूँ कि जब तक पृथ्वी को राक्षसों से हीन न कर दूं, तब तक चैन की श्वास नहीं लूंगा।

ज्ञान की वल्लभ करुणा के अथाह सागर श्री रामचंद्र जी मुनि अगस्त्य जी के चरणों में शीश झुकाकर सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ आगे चले और पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान अत्यंत सुंदर सबके मन को हरने वाला था। प्रभु श्री राम जी ने एक सुंदर परन कुटीर बनाकर सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ वहीं निवास किया। जब प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी पर निवास किया हर ओर आनंद ही आनंद छा गया। पर्वत नदी और तालाब अत्यंत शोभायमान हो गए। एक दिवस सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा,

सौमित्र, भक्ति सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही प्राप्त कर लेता है, परंतु भक्ति भी उसी को मिलती है जिसकी पृथ्वी के देवता सिद्ध प्राणी के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद के अनुसार जीते हैं और कर्म में रत। हे लक्ष्मण, भक्ति का फल वैराग्य, वैराग्य का धर्म में दृढ़ता और धर्म में प्रेम का फल मेरी प्राप्ति है। भक्ति नौ प्रकार कही गई है। इस प्रकार धर्म रक्षक, मर्यादा का निर्वाह करने वाले रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, जीव, ईश्वर एवं भक्ति का उपदेश दिया, जिसे श्रवण करके सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी

प्रभु श्री रामचंद्र जी के संकेत पर सुमित्र लक्ष्मण जी ने उस दुष्टा राक्षसी सूर्पनखा के नाक और कान काट लिए। रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्होंने लक्ष्मण के हाथों सूर्पनखा के नाक कान कटवाकर राक्षस राज रावण को चुनौती दी हो। उधर सूर्पनखा रोती बिलकती हुई खरदूषण नाम के राक्षसों के पास गई। नाक कान से रक्त इस प्रकार बह रहा है मानो विशाल काले पर्वत से गिरू का झरना फूट रहा। सूर्पनखा ने रोते बिलकते हुए खरदूषण को संपूर्ण आप बीती सुनाई तो खरदूषण क्रोध में आकर अपनी सेना लेकर श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल दिए।

कुलस्त्यवंश में उत्पन्न हुआ विशर्वा ऋषि का पुत्र राक्षस राज महाबली रावण को जब सुरपनखा ने खरदूषण वध का समाचार सुनाया तो रावण ने सुरपनखा को समझाकर अपने बल का बखान करके महल में भेज दिया। परंतु रावण स्वयं चिंता मग्न हो गया। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, उनको भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकता। इसका अर्थ है श्री भगवान ने धरती का भार हरने के लिए अवतार धारण कर लिया है, अतः अब मैं उनकी स्त्री का हरण करके उनसे वैर करूं, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं। यदि वे कोई साधारण मानव हैं तो उन्हें युद्ध में मारकर यश पाऊं, और यदि वो स्वयं श्री हरि हैं तो उनके कर कमलों से मृत्यु पाकर

बेचारा मारिच इधर कुआं उधर खाई। यदि रावण के कहे अनुसार नहीं किया तो रावण मार डालेगा, और यदि इसका कहा मानकर सोने का हिरण बना तो प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु। तब मारिच ने निश्चय किया कि इस पापी के हाथ

मरने से अच्छा यही होगा कि मैं श्री हरि के हाथों मरकर उनके धाम जाऊं। तब हमारी सोने का सुंदर हिरण बन गया और पंचवटी आश्रम के निकट जाकर उछल कूद करने लगा। जब जनक नंदनी श्री राम वल्लमा सीता जी ने उस अदित्य मृग को देखा तो सीता जी ने विनय पूर्वक श्री राम जी से कहा, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरण विचर रहा है।

मायावी मृग पर जब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बाण चलाया तो उसने श्री राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकारा। उधर आश्रम में जब सीता जी ने ये दुख भरी वाणी सुनी तो उन्होंने सोचा कि स्वामी किसी संकट में है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री भगवान के रक्षा हेतु जाने का आदेश दिया। सुमित्रा नंदन ने आश्रम से जाते हुए मंत्रपुरित एक रेखा आश्रम के चारों ओर खींचकर कहा कि हे माता, आप इस रेखा से बाहर मत जाना, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। इस रेखा के अंदर जो भी जीव प्रवेश करेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। उधर लंकापति रावण आश्रम को सुना देख याचक के वेश में आश्रम पर जा पहुंचा और भिक्षाम देही कहकर अलख जगाई।

जिस प्रकार बधिक के मजबूत जाल में कोई नन्ही सी चिड़िया फंसकर केवल पंख फड़फड़ाती है, उसी प्रकार जनक नंदनी श्री सीता जी दुष्ट और महाबली रावण के कब्जे में केवल हे राम रक्षा कीजिए की दर्द भरी पुकारे कर रही है। जब आकाश में विचरण करते हुए गिद्धराज जटायु ने श्री राम नाम एक नारी स्वर में सुना तो उसने सीता जी को पहचान लिया कि ये तो मेरे सखा महाराज दशरथ की पुत्र वधु सीता है। अतः जटायु ने सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने हेतु राक्षस राज रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया एवं सीता को लेकर उड़ चला।

अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, आनंद की राशि, अजन्मा एवं अविनाशी श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। पशु पक्षी पुष्पलताओं झरने आदि से एक अबोध शिशु की भांति श्री सीता जी का पता पूछ रहे हैं। अनुजी लक्ष्मण जी उन्हें धीर बंधाते हैं। इस प्रकार चलते चलते उन्हें घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि हे प्रभु, जनक दुलारी सीता जी को लंकापति रावण बलपूर्वक ले गया है। इतना कहकर जटायु प्रभु श्री राम की बाहों में प्राण त्याग कर उनके धाम को चला जाता है। गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं।

श्री रघुनाथ ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, सावधान होकर 9 भक्ति सुनो। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। हे भामिनी, गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित होकर करना मेरी तीसरी भक्ति है। और कपट तजकर मेरे गुण समूह का गान करना चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में अटल विश्वास पांचवी भक्ति है। इंद्रियों को वश में करके निरंतर संतों के धर्म में लगे रहना छठी भक्ति है। संपूर्ण विश्व को राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक महत्व देना सातवीं भक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना तथा पर दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। कपट रहित होकर मेरा भरोसा करना, हे भामिनी, मेरी नवीं भक्ति है।

प्रेमी भक्तों, श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आगे चले। राह में श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए जा रहे हैं, जिनका नाम लेते ही मनुष्य समस्त दुख संताप संयोग वियोग से दूर हो जाता है। आज वही गुणातीत श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं राम की लीला राम ही जाने। दोनों भाई चलते चलते पंपा नामक सरोवर के निकट पहुंचकर सरोवर के शीतल जल में स्नान करते हैं। तभी वहां देव ऋषि नारद जी आकर श्री राम जी को प्रणाम करके वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, वे सब जो एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नारद, राम नाम सबसे बढ़कर हुए। तब श्री रघुनाथ जी एवं अस्तु कहकर नारद जी को संतोष

प्रभु प्रेमियों, अरण्य कांड में भक्ति का मार्ग ही प्रभु को पाने के लिए सहज उपाय बतलाया गया। कलयुग में प्रभु को पाने का तीन रास्ते ऋषियों ने बतलाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान और कर्म का रास्ता पकड़कर हम इस घोर कलयुग में सफल नहीं हो सकते। ये कलयुग के लिए केवल भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। भक्ति के लिए समय, स्थान, जात पात की कोई भी पाबंदी नहीं।

विश्व के सभी प्रेमी भक्त आत्माओं, जैसे कि आपको मालूम है कि ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। इसीलिए आप इस लंका कांड को सुनकर अपने जीवन की सारी बुराइयों को दूर करें। तो आइए शुभारंभ करते हैं श्री रामायण का छठा कांड यानी लंका।

सयोजन के समुद्र पर नवनिर्मित सेतु की सुंदरता को निहार कर भगवान श्री रामचंद्र जी भाव विभोर हो उठे और बोले, इस स्थान की महिमा अवर्णनीय है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। और वहाँ श्री रामचंद्र जी ने विधिवत शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना की। इस स्थान का नाम रामेश्वर नाम से प्रचलित हुआ, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर की स्थापना करके प्रभु श्री राम जी ने सेना सहित सेतु पार किया और सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। उधर रावण की पत्नी मंदोदरी को जब पता लगा कि समुद्र पर सेतु बनाकर श्री राम जी वानर सेना सहित लंका के निकट आ गए हैं, तो वो रावण को यूं समझा।

प्रभु प्रेमियों, जब सुवेल नाम के पर्वत पर बैठे प्रभु श्री राम जी ने विभीषण, हनुमान, जामवंत आदि से आगे की रणनीति के विषय में पूछा, तब जामवंत जी बोले कि हे करुणायतन, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मेरे विचार से बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाए। भक्तजनों, जामवंत की ये बात सबको ठीक लगी। तब श्री राम जी वीर अंगद को निकट बुलाकर बोले, हे बाली कुमार वीर अंगद, तुम मेरे कार्य से लंका जाओ और रावण को इस प्रकार समझाना जिससे उसका कल्याण हो और हमारा भी कार्य बन जाए।

सज्जनों, राजमद में चूर रावण को बाली पुत्र वीर अंगद ने भांति भांति से समझाया, प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रताप बतलाया, प्रभु के बल का भय दिखलाया, परंतु काल के वशीभूत हुए रावण ने एक भी नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी, बल्कि अंगद के सन्मुख अपने बल का वर्णन करने लगा। परंतु कुमार अंगद ने जब कहा कि हे रावण, तुम वही बलवान रावण हो जो मेरे पिता बाली की कांख में 6 मास रहे, तुम वही पराक्रमी रावण हो जिसे पाताल लोक में बच्चों ने बंदी बनाकर घुड़साल में बांध दिया था, हे रावण, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। तब क्रोध में आकर रावण अपने राक्षस वीरों से बोला,

श्री राम भक्तजनों, वीर अंगद ने रावण की सभा में अपना पैर जमा दिया और बोला, हे रावण, यदि तुम सब ने मिलकर भी मेरा पांव हटा दिया तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं मैं सीता जी को हार जाऊंगा। प्रभु श्री राम जी यहां से वापस लौट जाएंगे। जय हो। भक्तजनों, ऐसी अटल घोषणा वही कर सकता है जिसको श्री रामचंद्र जी पर अटल भरोसा हो। परंतु मेघनाद आदि वीरों पर जब अंगद का पैर हिला भी नहीं, तब रावण अंगद के पैर की ओर बढ़ा तो अंगद ने कहा, हे रावण, श्री राम जी के पैर पकड़। तो प्यारे प्यारे भक्तों,

प्रेमी भक्तों, जब हनुमान जी श्री लक्ष्मण जी को बाहों में उठाए प्रभु श्री राम जी के सम्मुख आए तो श्री राम जी पर मानो वज्रपात हुआ, प्रभु के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब जामवंत के कहने पर लंका से सुषैण वैद्य को लाया गया। सुषैण ने नाड़ी परीक्षण के पश्चात बतलाया कि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी यदि रात रात में लाई जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। भक्तों, तब पवन पुत्र श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने चल देते हैं। उधर रावण ने कालनेमी नाम के मायावी राक्षस को हनुमान को रोकने के लिए

श्री राम जी के प्रिय भक्तों, जैसे ही भरत जी ने आकाश में देखा तो उन्होंने समझा कोई निशाचर अयोध्या नगरी पर पर्वत गिराना चाहता है। तब उन्होंने बिना फर का बांध चलाया जो हनुमान जी को लगा, और हनुमान जी श्री राम कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। जब भरत ने श्री राम शब्द सुना तो दौड़कर हनुमान जी के निकट पहुंचे और पूछा कि हे भाई, तुम राम नाम उचारने वाले कौन हो? तब हनुमान ने सीता हरण, लक्ष्मण मूर्छा आदि की सारी कथा भरत जी को सुनाई। तो भक्तों, भरत जी को बहुत दुख हुआ और भरत जी बोले,

प्रभु श्री राम जी ने भाव विभोर होकर अंजनी लाल श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया। उधर रावण को ये समाचार मिला कि हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचा लिए हैं, तो उसने अपने भाई महाबली कुंभकर्ण को जगाकर सारी कथा सुनाई। तो कुंभकर्ण बोला, हे भाई, तुमने जगदम्बा सीता का हरण करके ठीक नहीं किया, परंतु अब क्या विचार करना। और ये कहकर कुंभकर्ण युद्ध स्थल में पहुंच गया। कुंभकर्ण के अरण्य कौशल और बल के सम्मुख वानर भालू अधिक देर नहीं टिक पाए, तो श्री रामचंद्र धनुष बाण लेकर

जब रावण के पास कुंभकर्ण वध का समाचार पहुंचा तो रावण अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगा। तभी मेघनाद ने राक्षस राज रावण को धैर्य बंधाया और रात व्यतीत होने पर सुबह होते ही मेघनाद युद्ध के लिए चला। युद्ध भूमि में पहुंचकर महाप्राकर्मी मेघनाद ने श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। तब जामवंत ने मेघनाद का पैर पकड़ घुमाकर लंका में फेंक दिया। उधर नारद जी के कहने पर गरुड़ जी ने आकर श्री राम प्रभु और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया। उधर लंका में

तो सज्जनों, रावण सुत मेघनाथ के मरने के खबर सुनकर देवलोक से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व श्री रामचंद्र जी एवं श्री लक्ष्मण जी का निर्मल यश गान गाने लगे। तब हनुमान जी मेघनाथ के शव को लंका के द्वार पर रख आए। जैसे ही रावण को मेघनाद वध का समाचार

तो जैसे रावण पर वज्रपात हुआ एवं रावण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। लंका में कोहराम मच गया। मंदोदरी एवं सुलोचना आदि बिलक बिलक कर रोने लगी। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना मंदोदरी से बोली,

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात करुणा की मूर्ति है। जो उनसे वैर बढ़ाता है प्रभु उसे भी क्षमा करके निज धाम प्रदान करते हैं। रावण सुत मेघनाद ने सदैव श्री राम प्रभु को अपना शत्रु माना, परंतु फिर भी दया सागर दीन बंधु श्री राम ने उसे अपने वैकुंठ धाम भेज दिया और मेघनाद की पत्नी नाग कन्या सुलोचना जब अपने पति के शीश के साथ चिता में जल सती हो गई तो उसे भी प्रभु ने अपने पावन

प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्तजनों, जब प्रभु श्री राम जी रावण के साथ युद्ध करने के लिए चलने लगे तब विभीषण बोला, हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है ना कवच है, तो बलवान रावण से आप युद्ध कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री राम जी बोले, हे तात, सुनो, जिससे विजय प्राप्त होती है वह रथ दूसरा ही है, शौर्य धैर्य उसके पहिए हैं, सत्य शील ध्वजा है, बल विवेक दम पर उपकार चार घोड़े हैं, ईश्वर भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, विज्ञान ही धनुष है, निर्मल मन तर्कस है, सिद्ध ब्राह्मण एवं गुरु का पूजन अभेद।

दोस्तों, जब श्री रामचंद्र जी एवं रावण का भीषण संग्राम चल रहा था, प्रभु जी बार बार रावण के दसों शीश बीसों भुजाएं काटते थे, परंतु रावण के शीश और भुजाएं यथावत फिर जुड़ जाते थे। तब विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को बतलाया कि हे प्रभु, इसकी नाभि कुंड में अमृत है, अतः आप पहले उस अमृत को सुखा दीजिए, तभी रावण का अंत हो सकेगा। भक्तों, तब श्री रघुवीर जी ने अपने श्रृंग धनुष पर 31 बाण चढ़ाकर रावण पर छोड़े। बाण ऐसे चले मानो काल सर्प जा रहे हो, और उन बाणों ने लंकाधिपति रावण का अंत कर।

मर्यादा पुरुषोत्तम दीनबंध भक्तवत्सल श्री राम जी, क्योंकि खरदूषण वध से पूर्वक सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराकर अग्नि देव से सीता जी का प्रतिबिंब लिया था, अतः अग्नि से सीता जी को पुनः वापस भी लेना था, इसीलिए अग्नि परीक्षा की लीला रचाई गई। इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी, सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी, जनक दुलारे सीता जी के लिए स्वर्ग से पुष्प विमान आया, जिसमें बैठकर प्रभु परम पुनीता नगरी श्री अयोध्या जी की ओर चले। देवलोक से पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्व मंगल गीत गा रहे हैं, तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी का जय जय।

प्रभु भक्तों, आप सभी जानते हैं अहंकार का परिणाम विनाश की तरफ ले जाता है। रावण जो जानते हुए भी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगे हमारा बल और पौरुष कुछ भी सफल नहीं होगा, फिर भी अहंकार को ही अपनाता है और परिणाम स्वरूप अपना विनाश अपने ही हाथों करवाता है। तो आप आदरणीय भक्तजनों से हमारा सुझाव यही है कि किसी भी तरह के अभिमान और अहंकार की बात अपने दिमाग में कदापि न लावे। मुश्किल काम है मगर असंभव तो नहीं।

0: जरूर से बोलो ओम नमः शिवाय। चल रहा हूँ धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब तो मोह माया है। शिवा इस पीस, शिवा शांति है, शिवा सुंदर है, शिवा इस पीस, शिवा इस ब्यूटीफुल।
1: नन्हा सा मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। डिवोटी सिंग्स टू द लॉर्ड, ओ लॉर्ड आई एम अ चाइल्ड, आई एम पुअर, आई एम हेल्पलेस, एंड यू ऑन द अदर हैंड आर ह्यूज एंड जाइजेंटिक इन फॉर्म, एंड आई हैव कम टू यू विद वन रिक्वेस्ट एट हार्ट, ओ लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी। आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू सो, though I may be sinful, though my life may be filled with the blemishes of the world, but I am yet your child. I have come to your doors today, hey Prabhu, with tears in my eyes. Only your name, only your darshan, only your blessings will relieve all the pains and sufferings of my life. Only you, O Lord, will enable me to attain that state of eternal bliss.

जी प्रभु जी, मेरी लाज रखो। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और ज्ञान के देवता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हाँ मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बार फिर स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। और कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। और बहुत सारे शुभकामनाएं आपके लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से पेश हो रहा है। यही आशा उम्मीद है कि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जरूर से खुशहाल में होंगे। अपने को और अपना जरूर से ख्याल रखना।

हाँ मन के भीतर तो झांको मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त रहते कदर कर लो, वक्त रहते कदर कर लो, क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता।

संगीत में हम जीवन चरित्र सुन रहे हैं कि जब तक कोई साथ हो उसकी मुस्कुराहट को महसूस कर लो, वरना एक दिन सिर्फ यादें रह जाती है और उन्हें छू नहीं सकते आप।

हाँ हम तो सुने हैं और ये जरूर कहूंगी मेरे प्यारे सुनने वालों कि अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे। मैं भी अक्सर सुनती हूँ कि कल पे हम वादे छोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कल बात कर लेंगे, कल मना लेंगे, पर कभी कभी वो कल आता ही नहीं। तो जो कल करना है सो आज कर लो, एक कहावत है, जो कल करना है सो आज कर लो और जो आज करना है तो अभी कर लो। कब ये वक्त बदलेगा हमको नहीं पता।

Bhagawan. भगवान जब सिखाता है, जब भगवान जब सिखाते हैं तो सबसे पहले वक्त बदलते हैं। भगवान जब सिखाते हैं तो सबसे पहले वक्त बदलते हैं और फिर वो शख्स जिसकी हमने कभी कदर ही नहीं की, उस दिन समझ आता है कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, उसे संभालना भी होता है। इसलिए जो आज तुम्हारे साथ है उसे दिल से अपना लो। एक छोटा सा प्यार, एक आई एम प्राउड ऑफ यू, या एक थैंक यू भी किसी के दिल को सुकून दे सकता है।

वक्त रहते कदर कर लो मेरे प्यारे सुनने वालों, कि वक्त रहते कदर कर लो, वरना भगवान वक्त भी छीन ले लेते हैं। और वो शख्स भी जिनकी कमी फिर पूरी जिंदगी महसूस होती है, तो वक्त रहते कदर कर लिया करो।

0: बाप रे बाप रे बाप रे।
1: जी मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए पेश किया जाता है कुछ अनमोल गीत आपके लिए।

ये सब आप ही के लिए चुन चुन कर और लाया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से चलते हैं सुनने के लिए।

रस्ते में दो अनजाने, अकेले मत जइयो, अकेले मत जइयो। और इस बार हम आपको लेकर चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, तरह तरह के गीत हमारे गायक और गायिका ने गा गा कर और छोड़ दिया है, जो लुप्त होने को जा रहे हैं, पर हम लुप्त नहीं होने देंगे। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तान रेडियो से ये अनमोल गीत।

तू ये घर घर की कहानी है, हम तो घर में चूल्हा फूके और मजे करे। तू गीत का बोल, लता जी और महेंद्र की जी सुना दी है और फूफा जी के ऊपर भी गीत बनाया गया है, तो यहाँ से हम जरूर सुनेंगे कि फूफा जी का हाल क्या है।

0: जी मेरे सुनने वालों, आपने भी श्रवण कर लिए कि फूफा जी पे भी सुंदर सा गीत बनाया गया। फिल्म पूर्णिमा ने 1956 तक से पिक्चराइज किया गया फिल्म है। अभी तो मैं नहीं थी
1: इंसान
0: अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम सुनते हैं मन्ना दे जी।

0: मन्ना दे जी के वास में अपने लिए जिए तो क्या जिए। और इस बार हम सुनेंगे एक बार फिर मन्ना दे जी के आवास में, साथ दे रहे रफी जी।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

घर बार के बारे में, मामा के बारे में, फूफा के बारे में, ये सभी के बारे में यहाँ पर गीत बना दिया गया है और यहाँ से अबिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से आपके लिए चला दिया जाता है।

गजब भयारे भाई हाय हाय हाय, केला गुरु को चूना लगाए, जनका को जो किसी कुल्लू बनाए, अरे दूध वाला दूध।

0: मन भेद खाए। हाय हाय हाय हाय, कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या?
0: मंदिर

पुराने से पुराने गीत आपके लिए पेश किया जाता है। ये फिल्म पैगाम से निकाला गया, फिल्म पैगाम से निकाला गया है रफी जी और आशा भोसले जी के आवाज में। और अगर आप जो सुने हैं ना, आप सुनते हैं सुनने वालों, हम आपको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। और ये गीत में भी, ये गीतों में भी कितनी सच्चाई छुपा हुआ है। उन दिनों में ये सब गीत बना कर गा कर और रख दिया है हमारे आज के लिए। हम आज सुनते हैं तो कितनी हकीकत है इसमें। मेरे प्यारे सुनने वालों,

चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरे की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत यो दास। एक

चार दिन होंगे गरीबी के, जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी।

0: एक रोज हमारी भी ताल गलेगी।
1: जरूर से अगर आप दास चढ़ाए होंगे तो जरूर से वो एक रोज गल जाएगी, किशोर दास जी की आवाज में, कि एक रोज हमारी भी दाल गलेगी।

जी तो आ जाना, तो आ जाना, आपके पुकारे सुनाए आपको स्टीवन बेन और गुर नजर। साथ ये जरूर कहना चाहती हूँ कि याद रखना जो तुम्हें रोटा छोड़कर सोता है, याद रखना, जी हाँ याद रखना, वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा, वो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं होगा।

कितनी हंसी होगी अरिजीत सिंह के आवाज में हमने यहाँ से सुने हैं। इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, अगर प्रेम भी बुरा है तो फिर अच्छा क्या है। और जब बुरा करके भी बुरा ना लगे, जब बुरा करके भी बुरा ना लगे तो समझना कि बुराई तुम्हारे चरित्र में आ गया है। Dann het slechte het eigenschap waar uw eigenschap is geworden. जिस तरह पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, उसी प्रकार मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। और साथ ही साथ आपको लेकर चलते सुनने के लिए

Johnny, Johnny. इस बार हम सुनेंगे कि दिल में बजे गिटार।

डीजे पार्टी हिंदी रिमिक्स से आप सुन रहा है सुन रहे हैं, और यहाँ से आपको हम लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से ये ज़रूर कहूँगी कि दूरियाँ दूरियाँ से ही परखना है, दूरियाँ से ही परखने जाते हैं रिश्ते को, दूरियाँ से परखने जाते हैं रिश्ते को। आँखों के सामने तो सभी वफादार होते हैं।

दिल के पास बस आप ही रहते हो। आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान वालों, दोस्तों, भाई बहनों, कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ अभिका शेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम सलाम सत श्री अकाल राधे राधे नमस्कार जी। आप सब कैसे हो?

तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं और तुम्हारे पास हूँ सदा। सुनाए हमको ये दो मशहूर गाने वाले लता और मुकेश जी, बढ़ चलते सुनने के लिए।

अति सुंदर सदाबहार गीत आप सुन रहे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, दुख के कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करता है। कहने को तो सुख दुख आते जाते रहते हैं। दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करता है।

किशोरदा से हम सुनते हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए पल दो पल, और ये फिल्म जंजीर से निकाला गया है।

इस बार हम सुनेंगे आशा भोसले जी के साथ दे रहे हैं किशोरदा जी ने। तो है वही दिल ने जिसे अपना कहा, फिल्म का नाम ये वादा रहा।

ये वादा रहा जैसे आपने सुने, फिल्म का नाम है ये टाइटल सॉन्ग ये वादा रहा, और उनको सुनाए है आशा भोसले जी और किशोर दा मिलकर। किसी ने बहुत खूब से कहा है कि वच साइड साली ओक्सन एंड दैट इज अक्सी रियाक्सी कोटोम वी खुद दूत खुद ओंतमुत। जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो है उसे ज़्यादा पाने की उसे ज़्यादा पाने के लिए रोते हैं, जो मिल जाता है उसे पाकर कभी ना संतुष्ट होता है। इंसान के फितरत ही कुछ ऐसा है जो कभी ना पूरी होते हैं।

हाँ, प्यार प्यार प्यार प्यार महेंद्र कपूर जी, आशा भोसले जी की आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, और सुनने वालों आपसे ये जरूर कहूँगी कि कुछ तो चाहत रही होगी इस बूंदों की, इस बारिश के बूंदों को भी। कुछ तो चाहत रही होगी इस बारिश की बूंदों को भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद।

जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है, तो कोई थोड़े में ही

चांद खिला फिल्म सागर से निकाला गया ऋषि कपूर और डिंपल कबाडिया इसमें जो काम की है, और किशोर दास जी की आवाज़ में हमने सुने फिल्म सागर से जो निकलती फैफन तख्त में पिक्चराइज किया गया है। चलो चलो जिंदगी के सफ़र को एक नया मोड़ देते हैं, चलो जिंदगी के सफ़र को एक नया मोड़ देते हैं, जो हमें ना समझे, जो हमें ना समझे हम भी उन्हें समझाना छोड़ देते हैं।

0: सुर गाना के ये संगीत साज और संगीत में किशोरदास जी के गाए हुआ गीत है और चला जाता हूँ गीत का बोल है। इसमें ओरिजिनल में म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक दिया है आर.डी. बर्मन जी।
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

हाँ, देर से क्यों खड़ी हो और करीब आ जाओ ना। हाँ, रेडियो के वॉल्यूम कुन अब थोड़ा रैक्स और ड्राई कर देना, ताकि अगर आप घर में जिस कोने में भी हो, आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे, और आपके कानों जो तक पहुँचे तो आपके शरीर जो है वो मंडोले टंडोले हो चलेगा। दार वार्य यो ऑप फोकस दात ख्रुइट, या ये कैंट ये वार्द, या ये कैंट ये वार्द, वेट व्हाट ये वार्ड बेंड एंड वेट व्हाट ये विल। Liever alleen dan omringd door fakeness. Ja, ne kan.

जब आई रिमिक्स किया गया गीत आपके लिए। कहते हैं ना अवली दर इन न्यू याश। ओल्ड ओल्ड बॉलीवुड लव सॉन्ग्स रिमिक्स।

बड़े बड़े आँखियों से डर गया जी। ये बैंत वी ए दैंग दचे बैंत, या ये बैंत वी ए दैंग दचे बैंत, एक बैन नीत तफेल, ये बैंत खबों तवैन खबैंत, द क्राफ्ट वन पॉजिटिव दैंकन फूलन लेवन एन स्प्रेकन एस दान, ये बैंत वी ए दैंग दचे बैंत, वो चांद खिला।

ये दोस्तों मूवी के नाम थे शोले शोले एन शोले 1975 का जीपर एन जीपर एन जीपर जीपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगते हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी दुख

और क्या क्या क्या क्या खूब लगते हो, और खाली खूब नहीं सुंदर भी लगते हो।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा, ये पर्दा, और हटाकर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो जरा।

Johnny. It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: और मैंने भी राह रहेरी। उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउंड में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: शॉट केयरवॉल ऑन द बीट
0: एंड बीट।

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

रमदा योगी, रमदा योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया।

Wees je sterk toe, mensen. और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। चाहे आपके परदेसिया यहां हो, दनहाख में, अमस्टरडम, यूट्रेख्ट, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

Uh-huh.

परदेसिया परदेसिया इन परदेसिया एन मेंसे नाद परदेसिया अब क्या होगा दैट इज अनफर

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह अरेंजमेंट और होते हो पे जब कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारो, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला जीना, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं। और आओ मिल्क सुना जाए, मूवी का नाम है आदमी।

और दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकालाल का यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारो। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहान प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर तेरी दिल में, तस्वीर कब लोग दिल में उतारते हैं, ये किसी से बेहद बहुत बेहद दिल से और उससे प्यार करते हैं। नैतिक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का सुपर हिट सॉन्ग देवानंद मालधान सिन्हा का ये सॉन्ग है, आप सुनते रहो।

और तस्वीर तो तेरी दिल में आती ही रहेंगे। आओ नाइट के लता जी परमाश श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आजानी से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.5 तक। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

हैं तो आज हम आप लोग को दो टॉप सिंगर्स का प्रोग्राम हम सुनाएंगे और वो है यानी कि द टॉप सिंगर्स फ्रॉम इंडिया द टाइगर ऑफ द इंडिया कुमार शानू का गीत और एक बगल है अलका याग्निक का गीत। कुमार शानू के साथ अलका याग्निक के गीत हम चलाएंगे और फिर से उसके बाद हम चलाएंगे और वो है मोहम्मद अजीज का लवली हिट सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे। तो पहले हम चलते हैं मोहम्मद

और दोस्तों जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आपको कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तरह से है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आलका याग्निक कुमार शानू के ओर और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरग्रीन कुमार शानू एंड आलका याग्निक।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। शस्त्र से तख्त में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंटेन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी राज्य।

यहाँ से हमारा आज का प्रोग्राम जो है कुछ मन्ना दी और किशोर जी का गीत हम आप लोग को सुनाएंगे कि कहते हैं मानता है नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाती है। हमारे यारो तो हम चलते हैं परमाश्री मनादी की ओर और चुनरी में दाग कब लगते हैं जब अगर आप कुछ करते हैं तो लगते हैं ना।

और हमारी यारो लगा चुनरी में और चुनरी में दाग कब लगते हैं आपको तो पता होना चाहिए और दिल ही तो है। राज कपूर मनादी और इसमें मनादी का फिल्म का नाम है दिल है तो है। निखत द्रिय शस्त्र का ये फिल्म है। तो दोस्तों हम और आगे को चलते हैं और मनादी के बांध पे हम चलते हैं किशोर दादा के ओर और कहते हैं ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है, ना पूछ दिल के हकीकत मगर ये कहता है वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया है। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये फिल्म है जिसमें माला सिन्हा राजेश खन्ना ने काम किया है और किशोर दादा का ये सॉन्ग है।

और जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी एक सफर क्यों होता है दोस्तों, जब सुहाना होता है। मूवी का नाम है अंदाज 1971 का ये, और ये फिल्म है। तो हम और आगे को चलते हैं हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। तो और क्या है, जैसे कहा है किशोर के बाद में हम चलते हैं और परमाश्री मनाडेई के ओर की कहते हैं, इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुश नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम जाते हैं कि अगर हमारे गीतों में हमारी टूटिया हो तो हमें क्षमा करना दोस्तों, लेकिन हम जाते हैं प्यार करने वाले को लिए कि जोहरा क्या कहते हैं।

0: खान साहब, या तुम भी तकल्लुफ करने लगे, बड़े अफसोस की बात।
1: खाना वाना तो होता ही रहेगा, महफिल कब गर्म होगा?
2: महफिल भी जमेगी, तसल्ली रख।
3: दादाजी आज तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा।
0: अरे रामवीर यार, अब बुढ़े हो गए, गाना वाना पुरानी बात।
1: तुम तो बुढ़ा हो गया, हम तो नहीं हुआ। सुनाओ, नखरा बात करो। ओ भाभी जान।
4: जी भैया।
1: हो तुम्हारा शोहर बुढ़ा हो गया था, हम इसको जवान करता है।
0: अच्छा, लक्ष्मी सामने है तो मैं जवानों का जवान। लो सुनो,

और मेरी जोहरा जबी फिल्म वक्त का ये गीत है। तो कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, अब जिसके ये मैं आई वो ही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर सारे आम रख दिया है। तो हम चलते हैं रात कली में क्या आते हैं दोस्तों, जो सपने आते हैं तो क्या आते हैं, रात कली में किशोर दादा ने आते हैं।

और मुस्लिम को तस्लीम अर्ज है, और हमारे हिंदू को प्रणाम। दोस्तों कितनी खूबी सी हमारी और यानी परमा श्री मन्ना देवी ने और इस गीत को आपको सुनाए है यारो। उसके बाद हम चलते हैं किशोर दादा की ओर। अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, अब जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला कर ए आम रख दिया है। तो किशोर जी क्या कहते हैं?

बड़ी मुश्किल सी ये दिल मेरा दिल नी ठड़प की। और किशोर दाना ने इस गीत को सुनाए हैं तो कहते हैं बड़ी मुश्किल से इसी खुशी नसीब होती है, बड़ी मुश्किल से इसे खुशी नसीब होती है। किसी के पास आने पर खुशी हो न हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है। तो हम चलते हैं अगला जोंग की ओर। हमारी दोस्तों लता जी, नैतिकी लता जी और परमात श्री दादा हेमंत दादा मन्ना दे का ये सॉन्ग आपको सुनना चाहिए।

और दोस्तों आपको पता चले और मनाडे के बाद हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे। कहते हैं अब जिसके ये मैं आई वही पाई रोशनी, जिसके लिए मैं आई वही पाई रोशनी, हमने तो दिल जला

और दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर आगे, और यहाँ पे मनाली क्या कहते हैं।

तुमने अपनी आवाज वाली को पास तुम्हारे खोए हुए स्वर्ग में वापस मिल गई। हाँ, आज देवी माँ से कुछ और भी मांग ली थी। गाओ गोपाल गाओ, इस नौजीवन की बसंत बाहर गाओ।

और आप लोग जानते हैं हमारी यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों।
2: हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ अफिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारिक गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने की कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ,

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है रफ़ी साहब का, ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकालकर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वेत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

ये भी रफीसा है बवाशा जी कारवां में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं कार्यक्रम, आप पेश है तो लीजिए इस तरह से।

मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म स्वयंवर में से निकाल कर हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। आशा जी है फिल्म हमसाया ओपी नैयर के साथ।

अच्छा जी, आपको सुनाए ओपन एयर के साज पर फिल्म हम साया में से निकाले हैं ये शानदार गीत। चलिए, ये गीत बहुत दिन हुए शायद आप भी नहीं सुने होंगे, एक दूजे के लिए।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
1: सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहे थे कार्यक्रम में ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, आपने किशोर कुमार जी के वर्जन यानी किशोर कुमार जी की आवाज़ में ये गीत बहुत बार सुने हैं। चलिए हम आपको यही गीत सुनाते हैं लता जी की आवाज़ में जो हम कम चलता है। तो लीजिए लता जी फिल्म महबूबा में से।

फिर भी मेरा मन प्यासा, लता जी की आवाज़ में फिल्म महबूबा में से निकाले हैं, आर डी बर्मन के साथ पर हमने पेश किए। VVV.FM.NL पर आप चुन हैं, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है मैं आपको सुनाऊँ ये गीत, मैथी मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। हाँ, फिल्म पतंगा में से, सॉरी कटी पतंग में से निकाल रहे हैं।

जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो भी एक धमाका दिए धमाकेदार गीत है।

Bonito.

ये भी कारवां में से निकाले हैं। आरती बर्मन के साज पर आशा जी आपको सुनाए, चलो ये सुनते हैं लता जी और एवरग्रीन की।

जोगी ओ जोगी प्यार में क्या होगी। ये गीत आपको सुनाया गया, फिल्म है लाखों में एक, और लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में पेश हुआ फिल्म गैम्बलर में से निकाल कर निकली सैफ़ तक का ये गीत एस देवबर्मन के साज पर हम आपको सुनाएंगे।

लता जी आपको सुनाएं अगर तुझको मोहब्बत है, फिल्म आपकी परछाइयां में से है, नई गिनती इन्फ्रेंसी शस्त्र का, जी आनी की थी फिर शस्त्र का ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता राव जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है, तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेत निन्सेस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह क्या दिव्य था रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमने कहा ना मैं कुं कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुनाई है फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग उफरलीद। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा लेकिन सेस हेल यंग उफरलीद दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिन सहन शस्त्र का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकादार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकादार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकादार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साँझ पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के है।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकतिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साथ पर माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली निकने से का ये गीत हमने एक बार कहा था पता नहीं कब लेकिन एक बार फिर कह देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगेती निघ्न से अस्तक का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका साड़ी भी बनता है, जी हाँ रेशमी शायद साड़ी। चलिए www.faunfm.nl पर आप चुने हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। उदित नारायण और अलका याग्निक जी फिल्म धड़कन से निकाल रहे हैं, जी नहीं सॉरी फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फ़कीरा में से निकाल कर 1976 निकली सैशन सीफ तक का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

है दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं, चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई, चलो सुनते हैं। लेकिन तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बात यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सस का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे, हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है, तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से।

ए चांद की जेबाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेफन से हस्त का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निगदी एन सैफंत 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है, या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है, तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है, यानी भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रह स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी को भी

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तवड़ हाउस है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी की आवाज में ए मेरे दिले नादा।

मुफी तौर हाउस से भी हमने पेश किए हैं, ए मेरी दिले नादा तू गम से ना घबराना। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पगला कहीं का से हमने पेश किए हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे। लोग अक्सर कहते हैं कि तुमने अभी देखा ही क्या है। मैंने देखा है घर कैसे बिखरता है, अपने एक पल में कैसे पराए हो जाते हैं, मोहब्बत कैसे मुंह मोड़ लेती है, ख्वाब कैसे मरते हैं और जरूरत खत्म होने ही लोग किस तरह बदल जाते हैं। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं याद न जाए बीते दिनों की फ्रॉम द मूवी दिल एक मंदिर।

फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इसी फिल्म से हमने पेश की है मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में याद न जाए बीते दिनों की। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने हमेशा खुश रहे, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी गाइड से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, फ्रॉम द मूवी गाइड से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। अगर आप किसी को अपनी खुशी में याद करते हो तो आप उन तो आप उस इंसान के करीब हो। अगर आप किसी को गम में याद करते हो तो वो इंसान आपके करीब है। भरी दुनिया में आखिर दिल

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया है ज़िंदगी, चलने का नहीं सही संभलने का हुनर तो आ गया। लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी गीत से आप सुनेंगे द टाइटल।

अभी आप सुन रहे थे अजय तुझको पुकारे मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी गीत से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी की आवाज में मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शारदा जी के वास्ते। जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो शारदा जी आप ही के नाम हम पेश करते हैं। गीत का बोल है, मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी पारस मनी से।

मेरे दिल में हल्की सी, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी पारिस, यानी पारस मनी से हमने पेश किए हैं, और ख़ास करके ये गीत हमने पेश किए हैं शारदा जी के वास्ते, जबकि शारदा जी ये प्रोग्राम को सुन रही है। मोहम्मद रफ़ी जी, हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।

अभी आप सुन रहे थे छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, अनीता है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात। ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खांसता लता जी आपको सुनाने वाले हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अनीता से हमने पेश किए हैं कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा ना बाबा पिछवाड़े बुढ़ा खास्ता। किशोर दा आ रहे हैं प्रोग्राम में और गीत का बोल है, मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर से आप सुनेंगे।
1: हर दम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

फ्रॉम द मूवी पत्थर के सनम से हमने पेश की है आशा भोसले और दमायती मुकेश जी की आवाज में भी आपने सुने हैं। मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे किसी की खोज है। सुनने वालों, एक सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं बंदा परवर थाम लो जिगर। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है, इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी नज़र होती है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर सभी की नज़र होती है, लेकिन दिल को साफ नहीं रखता जिस पर रब की नज़र होती है।

अभी आप सुन रहे थे बंदा पडवर थाम लो जिगर, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। आँखों में कयामत के काजल, चलिए मिलकर सुनते हैं

महेंद्र कपूर जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे आंखों में कयामत के काजल, फ्रॉम द मूवी किस्मत से हमने पेश किए हैं। गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, गुजर जाती है ये खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रहती है रुके रास्तों की तरह। प्यार का मौसम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में तुम बिन जाऊँ कहाँ।

अभी आप सुन रहे थे तुम बिन जाऊं कहां, ये दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सनम तुमको चाह के। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, इसी फिल्म से आप सुनेंगे लता जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ, मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में एरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल, स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख शांति का उपदेशक, महान गुणवान, शांत गंभीर, त्रिकलाज्ञ एवं देवता। महावीर जी, भगवान महावीर बहुत अच्छे गुणवानी, संतोषी और एक अच्छे भगवान हुए हैं।

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तो बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना। सुनने वालों, हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं, वो भी कभी कभी फड़कती है। तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना। सुनने वालों, हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाला बोहें कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब बाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दायां गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बायां गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

सुनने वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितैषी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता सुनने वालों, अशुभ होता है। ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे, जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है सुनने वालों। उबकाई आने लगे, जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है, जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो, जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूते उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है, परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आँख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारे गायें हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पाँव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना ये गीत आपको बताते हैं।

0: भाई जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नहीं खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

और हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए परमा श्री मोहम्मद रफी और नाइकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्ते दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी जोंग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये जोंग है।

0: जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको, वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये हैं।

और ऐ दिल मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम से नागिन का ये सॉन्ग सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये शिपर जोंग थे, साथे यार किशोर दादा, क्या सुनाते हैं एक दुएत के ओर हम लोग आज चला जाए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नाइटिंगेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सब का आवाज तो जाते